जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण जय गोविंद कृष्ण।

0: नहीं नहीं नहीं रचति दुखं करणे नहीं नहीं रचति दुखं करणे
1: Thank you.